ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निजाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और जहनी सेहत को आगे बढ़ाने पर मजबूत तावुन को तस्लीम करने के लिए उर्दन का दौरा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रियासतहाई मुत्तहिदा के इनखिला के नोटिफिकेशन पर WHO का बयान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेविड नाबारो को खराज तहसीन पेश करना। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक दवाई की याद, ईसीकॉर्ड हेल्थ केयर INC लेवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स USP 200 MILICEN TIGRAM 0.2 mg को वापस मंगवा रहा है, जो 90 गिनती की बोतलों में पैक किया गया है। NDC 16729457150150150। वजह, जीली दवा। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फूड प्रोडक्ट याद, H और यू इंक DBA सन नूडल, सोरा टेनमेन हॉट एंड सोवर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सोप बेस को वापस बुला रहा है। खुर्दा पैकेज नेट WT 15.4 ounce प्रोडक्ट रामीन नंबर है। वजह, सोबा सास का पैकेट जिसमें बोनेटिव सार्डियन और मैकरिल मछली शामिल हैं, सोरा टेनमेन हॉट और सोवर फ्लेवर रामीन नूडल पैकेज में पैक किया गया था। हम किस तरह तस्दीक करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो पर हर तबका सेहत के सरकारी हुकाम की अवामी तौर पर दस्तियाब रहनुमाई से बनाया गया है और नशर करने से पहले उसका जायजा लिया जाता है। हम हकायक या आदाद शुमार ईजाद नहीं करते हैं। जब हम हेल्थ अलर्ट का इश्तराक करते हैं तो ये एक नामजद सरकारी जरिया से आता है। आप universalhealthradio.org पर मजीद जान सकते हैं। हाथ धोना। अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से धोना बीमारी से बचने के आसान तरीन तरीकों में से एक है। अपने हाथों के तमाम हिस्सों को कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें, खास तौर पर खाने से पहले और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद। अगर साबुन और पानी दस्तियाब नहीं है तो अल्कोहल पर मबनी हैंड रग भी काम करता है। साफ हाथ बहुत से इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। इसहाल और जबानी रिहाइड्रेशन। छोटे बच्चों के लिए इसहाल खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जैसा कि हिदायत के मुताबिक मिलाया जाता है, इस खोए हुए सयाल की जगह ले लेता है और जिंदगी बचाने वाला हो सकता है। बच्चे को सयाल और दूध पिलाते रहें। पाखाना में खून, बार बार उल्टी, धंसी हुई आंखें या बच्चा पीने से कासिर होने की सूरत में फौरी तौर पर देखभाल करें। नौजायदा को दूध पिलाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैदाइश के बाद पहले घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू करने और पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने की तजवीज़ करती है। माँ का दूध बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है और मुकम्मल ग़िज़ाइयत फराहम करता है। दिन रात मांग पर खाना खिलाना। अगर खाना खिलाना तकलीफ देह है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो किसी हेल्थ वर्कर से मदद तलब करें। हमल में खतरे की अलामत। हमल में कुछ अलामात को बगैर किसी ताखीर के देखभाल की जरूरत होती है। उनमें अंदामे निहानी से बहुत ज्यादा खून बहना, धुंधली नजर के साथ शदीद सर दर्द, तेज बुखार, पेट में शदीद दर्द या बच्चे का मामूल से बहुत कम हरकत करना शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी हो तो फौरन सेहत की सहूलत पर जाएं। बाकायदगी से कबलस पैदाइश चेकअप में शिरकत से माँ और बच्चे दोनों को महफूज रखने में मदद मिलती है। बचपन की वैक्सीनेशन। वैक्सीन जिस्म को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी संगीन बीमारियों से लड़ने की तरबियत देती हैं। अपने बच्चे की वैक्सीन को शेड्यूल के मुताबिक रखना बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करता है और अगर कोई खुराक छूट गई हो तो कैच अप खुराक दस्तियाब हैं। हिफाजत के लिए वैक्सीन का वसी पैमाने पर मुतालिया और निगरानी की जाती है। अपने मकामी क्लिनिक से पूछें कि आपके बच्चे के लिए कौन सी वैक्सीन वाजिबुल अदा है। ये सेहत की मालूमात है, तिब्बी मशवरा नहीं। ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी जराए से आपकी जबान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी जराए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के